0: Ko Fresh FM tēnei, e pā oho ana mai I te tau ihu. This is Fresh FM broadcasting from Top of the South. Ko tahi karaka I nāia nei, it is 1 o'clock.
1: Join me, Pat B, for Fresh FM's newest show, Under the Influence.
2: Pat B, UTI, terms and conditions apply.
3: Get in quick, sign here, here and here. The Boom Times is back.
1: Tune in every Wednesday from
2: 9 PM.
4: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।